पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले इसमें पाए और मैं तस्नु अगले वजू भी धुना खाए वजू गुआ अगला मैं पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस कही सा पास नानक हुकम ना चले।

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साह साहान गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तो सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत प्रभ दातो दातार पर्यो जाचकी किसरना मिले दान संतरेन जिह लग पवजल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावे बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर पहन में जन नानक गुर पार ब्रह्म हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ति तुस कै बल राम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिस कै बल राम जियो बाबुल मेरा वड समरथा करण कारण प्रभारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भव जल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा पुस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अन दिन मन तन पीवा आद जुगाद भगतन का राखा पुस्तत कर कर जीवा नानक नाम
रस मीठा। अन दिन मन तन पीवा, सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साह, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दशाह, जिस पास बैठिया

सुहि महला पहला कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटिम कालड़ी मस तोतिया जूठ न उतर जे सौ तो तिस उज्जल कहा चिलकना कोटिम कालड़ी मस तोतिया जूठ न उतर जे सौ तो तिस सज्जन से नाल मैं चलदिया नाल चलान जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहा कोठे मंडप माड़िया पसह चित वियाह ठिया कम नयावनी विच सखणिया बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुट कुट जिया खावणे बग्गे ना कहियान सिमल।

यो सब किश जानला, सब किश तेरे वस, तेरा घर भला, तेरे घर आनंद वधाई, तुद घर मान, महत्ता तीज अपना आप यार, सर्व कला भरपूर दिसे।

नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: तेरे घर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर जिसे जत कथा नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता सलोक
1: पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत

पौड़ी वडी वडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा कर पला तेरा कर आनंद बधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत।

रंग बिरंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरे वस तेरा कर भला तेरा कर आनंद दहे तो दुकार माण महता तेज अपना पजा सर्व कला पर पूरे दिशा जत कता

श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौकी आनंद साहिब जी की अरदास कुल चौक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ

मुन त्यान तरे फिर सगल जोग कभू को पावे आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहित बरंच जस गावे जाको शिव मुन गहनत जात कबिलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट भीख किए फिर ते उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी।

माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दा खेला सगल जगत चंगयाईया बुरयाईया वाचा धर्म हदूर करम।

शर्मा शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेंती चौपई। हमरे करो हादर अच्छा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट स्वै तुम घाव हो, आप हाद मुहे बचाओ। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर इच्छा निज करद करिय, सा बैरन को आज संघरिय। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो अवर चाहूं सो तुम ते पाऊं।

आई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सोइया पाएंगे जब ते तुमरे, तब ते को आंतरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान

सेवा करे सो चाकर होए, जाल थाल मही आल राव रहे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं को, प्रणवत नानक तारे सोए।

हम आव गुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई, सुकह टल गुर सेवी, अहनस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी, सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहांदे।

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दवायो, सर्ब सुख हर नाम डाई, गुर प्रसाद नानक मत पा।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मत दिवस रात दोए दाई।

0: कर कृपा हर नाम देवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: पवन गुरु पाने पिता माता धरत महत, दुसरात दुदाई दाया, खिले सगल जगत

0: नीच सदाई है जी जरवाना पर हर जरवीस करें आई है और है ना परिये पाई है परिये पाई है परिये पाई है
1: थोड़ी नौ तरह निरंकार है ना ले नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे अखवाई जे लोड़ है चंगा अपना कर कुन होनी सदाई जे जरवाना पर हरे जरवेश करे दिया ये को रहे ना पर ये पाई है को रहे ना पर ये

0: तीर्थ नावह अर्चा पूजा अगरवास बहकार, जोगी सुन त्यावण जेते अलख नाम करतार, सुखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार, सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार, दे दे मंगह सहसा गुणा सोप करे संसार, चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावे का, एक होदा खाए चले थाओ तिना पे काई कार, जल थल जिया पुरिया लोआ आकार आकार, वे जे आखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सार, नानक भगता भुख सलाहन सच नाम आधा, सदा आनंद रहे दिन रातें, गुणवंतिया पाछा महला पहला।
1: मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्यार, घर पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंग्यार, नानक जिन करते कारण किया, सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाए, सतगुर

0: अंडज जेरज उत भोजा खानी सेत जाह सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय के संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताह सो करता चिंता करे जिन उपाया जग तिस जोहारी स्वास्थ्य तिस तिस दिबान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लख निकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रमाण लख तप उपर तीर्थां सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया अवन जान नानक मती मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी सचा साहब एक तू
0: जिन सचो
1: सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिन कै हिरदय सच वसाया मूरख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया विच दुनिया काहे आया
2: पौड़ी सच्चा साहिब एक तो जिन सच सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तिनी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिन के हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया का है आया।

0: पहला दुख दारो सुख रोग भया जा सुख ताम न होई तो करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत बसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल हो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वीर शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं पराकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे हो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
0: हे कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देव सहज को जाने पेयो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
1: कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़ी।

आयो शरण जी के दानी, कारण करण समरथ श्री धर, राख लेहो नानक के स्वामी।

रंच करेत खेत तन रिमत दुर्लभ देह सवार तरी खान पान सोते सुख पुंचत संकट काट बिपत हरे मात पिता भाई अरबंदप भोजन के सब सोज परे बर्दमान होवत नित प्रतनित आवत निकट बिखम जरे रे गुणहीन दीन माया किरम सिमर स्वामी एक करे कर गले हो कृपाल कृपा निद नानक काट परम परे रे मन मूस बिला मैं करबत करतब करत महामुगना संपद दोल चोल संग चूलत माया मगन परमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तास्यो मोह बड़ो सो कना बोयो बीज अहंग मम अंकर बीतत आवत करत अगना मृत मंजार पसार मुख नरखत पुंचत पुगत पोख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना।

0: माया मत कहाँ लो गारो, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात रिधे ना बिचारो, रथ ना सब न गस सिंघासन, शिन में त्याग नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न कऊ दिष्ट निहारो, कोट न ओर न कोस न छोटा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कर्तर साजन साख, उल्टत जात बिरह की शारो, दीन दयाल पुरख प्रपूरण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्री पतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो, हे भगवंत कृपा कर तारो, ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर, रसक रसक ठाकर गुण गावत, इंदर मनिंदर खोजते गोरख, तरण गगन आवत फुन तावत, सिद्ध मनुख देवर दानव, इक तिल ताको मरम ना पावत, प्रिय प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति, हर जनता के दर्श समावत, तिसे त्याग आन को जाचे, मुख दंत रसन सगल का सजावत, रे मन मूर सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत, रे मन मूर सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत,
1: प्राण मान दान मग जोहन, हीत चीत दे ले ले पारी, साजन सैन मीत सुत पाई, ताहूं ते ले रखी निरारे, तामन पावन कूरक मावन, ए विद करत औतन जारी, कर्म तरम संजम सुचनेमा, चंचल संग सगल विदहारी, पस पंखे बिरख स्थावर, बहुविद जोन परम्यो अत पारी, खिन पल चसा नाम ने सिमरऊ, दीना नाथ प्राण पसारी, खान पान मीठस भोजन, अंत की बार पोत कत खारी, नानक संत चरण समुद्रे, उर माया मगन चले सब डारी, सतगुर नानक भगत करी इक मन, तन मन तन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूरत निज तारी, अगम ज्ञान

चंदन चंद न सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जान सुन प्रताप गोविंद निरपौ पय मन तोट न आवे संचया नाम तन संत जना स्यों संग पाईए वड्डे पुन पहर हर त्याए हर जस नित सोन संत जना स्यों संग पाईए वड्डे पुन आठ पहर हर त्याए हर जस

पुनित कहते पवित सतगुर रहे आप भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनित कहते पवित सतगुर रहे।

0: गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो, गोबर तरन ना जाए। तोती टिका तै जपमाली धान मलेशा खाई। अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम तुरका पाई। छोड़ी ले पखंडा नाम लया जाहे तरन दा महला पहला।
1: मानस खाने करी निवाज छुरी वगायन तिनगल ताग। तिन कर ब्रह्मण पूरी नाद उन्ना पियावे ओई साध। कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार। शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर। मत्थे टिका तीर तोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई। नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण मलेच तान लै पूजे प्राण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना। देख है चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार। मत पिटै वे मत पिटै अन्न हजारा पिटै। तन पिटै फीड़ करीन मन जुठै चुली परीन। कहो नानक सच त्याई है सुच होवै तां सच पाया पौड़ी चित्ते अंदर सब को। वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याईया। आपे ही कर्म कराएंदा वड़ वड़ा बड़मे दनी। सिरै सिर तंदै लाएंदा नदरु पट्टी जे करे। सुल्ताना काओ कराएंदा दर मंगना पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा।
2: पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़े आईया। आपे ही कर्म कराएंदा वडो वडा बदमेजनी। सिरे सिर धंधे लाएंदा नदर उपठी जे करे। सुल्ताना कहो कराएंदा दर मंगन भिखना पाएंदा दर मंगन भिखना पाएंदा।